चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

अपनी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में

अब से मुर्गी पालेगी, बच्चे काली बिल्ली के। अब से मुर्गी पालेगी, बच्चे काली बिल्ली के। लड़ना भिड़ना बात बुरी, कहे से आने दिल्ली के। क्यों वो गोली खाए पाए जो लड्डू तिल्ली के। चली लड़ाई भारी रे, टल टलम टम टलम टल, चली ये फौज हमारी रे। चल चलम चल चलम चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल।

हे सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ,
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

ये उजाला रेडियो है, यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठाइए, मज़े लीजिए। हम आपको सुनवाने के लिए एक के बाद एक सुरीले नगमे चुने हैं, जिसे सुनने से एक पल के लिए अपने जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। शुरू करती हूँ दुआ से, प्रार्थना से। खुदा आपको ईमान की सलामती अता करे, सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, और खुदा की निगहबान फरिश्ते आपके और आपके ख़ानदान की हर जगह हर पल हिफाजत करे। आपको रूहानी और जिस्मानी सेहत के खजानों के साथ सलामत रखे। इतनी शक्ति हमें देना दाता।

अपनी शक्ति हमें दे न दाता, मन के विश्वास कमजोर होना। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाज शरीफ पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

कौन सी खूबी है जो तुझसे गले मिलकर जल जाता है परवाना। चांद अपना सफर खत्म करता रहा, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही।

प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको भक्ति और मजहबी संगीत सुनवाए। गजल शौकीन के वास्ते हमने कुछ गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे, मजे लेंगे। ऐ शमा तेरी लौ में

चांद अपना सफर खत्म करता रहा। असद भोपाली और जफर गोरखपुरी का कलाम था, उषा खन्ना की मौसिकी, आवाज लता मंगेशकर की। करके वादा मुकर गया, आखिर तू भी दिल से उतर गया। उन्हें बेवफा जो कहूँ तो तौहीन है वफा की, वो तो वफा निभा रहे है, कभी इधर तो कभी उधर, गुल फेंके है गैरों की तरफ।

गुल फेंके है गैरों की तरफ। महान गजल गायिका बेगम अख्तर से आपने भी ये गजल सुनी। तेरे जाने का गम भुलाता हूँ, तेरा आने की याद आती है। हैली इस बेबसी के आलम में, किस जमाने की याद आती है। आज रात भी गुजरी है कल की तरह।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल शायर अमीर कज़ल बश का कलाम था, आवाज़ और मौसिकी खुद चंदन दास की। तेरे प्यार में दो पल की जिंदगी बहुत है, एक पल की हंसी, एक पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया जाने या ना जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने ये बहुत है। ऐसे में तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा।

छू लेने वाले नगमा पेश था रफ़ी साहब की मीठी स्वर में। प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं, तो आइए सुने अब गीता दत्त अपनी शोखी आवाज़ में क्या सुनाएंगी। लीजिए पेश है।

सुनहरी दौर के गाने आप सुन रहे हैं। संगीतकार सलील चौधरी संगीत दिया था और शैलेंद्र ने तर्स को लिखे थे। बेबसी है, उदासी है और दर्द है, सब है मेरे पास, सब है मेरे पास, बस एक तुम ही नहीं हो। काहे कोयल शोर मचाए रे, मुहे अपना कोई याद आए रे।

अमर गीत आपने अभी शमशाद बेगम से सुना। राम गंगुली संगीत से सवारे थे और शहजाद लखनवी का लिखा तर्ज था। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं सुनाएंगे मन्ना दे साहब।

0: मुझसे जमाना दूर हुआ, बोतल ने कहा।
1: बताऊं क्या कहा?
2: नहीं बता।
1: अच्छा बता।
0: हर दर्द के मारे को एक दिन पल

0: अरे खुकिया।
1: सुनहरी दौर का गीत पेश था, गाने वाले थे मन्ना डे साहब। गाने जो प्रोग्राम सबरंग में आप सुन रहे हैं, आज भी इन गानों में वही ताजगी है। बार बार सुनो तो भी जी नहीं भरता। जी हाँ, मुझे एहसास है, क्योंकि बहुत से लोग जब भी मिलते हैं कहते हैं कि वो बेसब्री से इस घड़ी को इंतजार करते हैं।

अभी आपने स्वर की देवी लता मंगेशकर से ये गीत सुना। संगीत से सवारे थे नौशाद अली ने। कहते नहीं किसी से मगर, मगर जानते हैं हम, रोया जरूर होगा वो बिछड़ने के बाद।

फिल्म गीत गाया पत्थरों में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में अदाकारी किए थे जितेंद्र और राजश्री। अब लीजिए अगला गीत पेश है रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म उड़न खटोला में से ये गीत पेश था और ये अदाकार दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। साथ में थी अदाकारा निम्मी। गीता दत्त से आइए सुने ये गीत।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में निशा इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। कई हफ्तों से हमने महान अदाकार देवानंद के बारे में बयां कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि देवानंद का भाई चेतन अनंत की पहली फिल्म थी नीचा नगर। ये फिल्म का रील्स डिब्बा में बंद पड़ा था और कभी रिलीज नहीं हुआ था। इसके वजह से चेतन अनंत ने हिम्मत हार गया था, दूसरी फिल्म बनाने को तैयार अब नहीं था। अपने भाई की हालात से देवानंद खुद परेशान था। फिर उन्होंने फैसला किया, क्यों ना हम मिलकर अपने भाई के साथ फिल्म नेवकतन शुरू करें, नेवकतन प्रोडक्शन का नाम से। चेतन अनंत को अपने भाई की फैसला से दिल में फिर जज्बा जाग उठा, क्योंकि फिल्म जो बनाएगा उसमें देवानंद मकबूल गायिका और अदाकारा सुरैया के साथ काम करेंगे। कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम आपको फिल्म विद्या का गीत सुनाते हैं, जिसमें देवानंद पहली बार सुरैया के साथ काम किया था।

कभी नैन से नीर फिल्म विद्या का गीत आपने अभी सुना, जिस फिल्म में देवानंद और अदाकारा सुरैया पहली बार एक साथ अदाकारी किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि देवानंद अपने भाई चेतन अनंत के साथ मिलकर नया बैनर बनाए निवकतन प्रोडक्शन। अब चेतन अनंत का हौसला फिर बुलंद हो गया था, कोई रुकावट नहीं थी दूसरा फिल्म बनाने में। फिल्म थी अफसर, उसे एहसास था कि फिल्म अफसर जरूर कामयाब होगी, क्योंकि सुरैया तैयार थी इस फिल्म में देवानंद के साथ काम करने को। बिना कोई सवाल किए वो इकरारनामा पर दस्तखत की थी। दिल में खुशी की लहर इसलिए कि रोज अब वो शूटिंग के दौरान देवानंद उसका प्यार उसके साथ रहेगा। फिल्म अफसर में एक साथ काम करने से देवानंद को कोई रुकावट नहीं थी सुरैया के घर जाने से। देवानंद ने कहा कि उसे सुरैया से अब मोहब्बत है, वो उसे अपना बनाना चाहते थे। ये एहसास कि जिस दिन से वो सुरैया से नहीं मिल सकते थे वो बेचैन रहते थे और 100 बहाने ढूंढते टेलीफोन के जरिए बातें करने को। देवानंद ने कहा ये बात नहीं है कि उसे सुरैया से पहले प्यार नहीं हुआ था। हाँ हुआ था, कई बार हुआ लड़कियों से प्यार, और ये भी कहा उसने कि शादीशुदा औरतों से भी जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी था। धीरे धीरे अब सुरैया की नानी जी और मामू जान को देवानंद का घर आना पसंद नहीं थी। देव रोजाना ट्रेन से बांद्रा स्टेशन से चर्च गेट स्टेशन पर उतरते थे और वहां से चलकर मैरिन ड्राइव जाते थे सुरैया से मिलने को। उससे मिलने के संगीतकार प्रोड्यूसर या कोई और आते थे, पर सिर्फ देवानंद से मिलने के लिए वो बेताब रहती थी। देवानंद को अंदर आते ही सुरैया उसके साथ अकेले में बैठकर बातें करती थी, जो घर वालों को अब बिल्कुल पसंद नहीं थी और देवानंद को घर आने से अब मना कर दिए थे। सुरैया ने इसके खिलाफ थी और अपने नानी माँ और मामू जान से बगावत करने लगी। सिर्फ सुरैया की माँ अपनी बेटी के साथ थी। नानी माँ और मामू जान के बाहर वालों और बाकी परिवार कान भरते थे कि ये कैसे हो सकता, एक हिंदू का लड़का एक मुस्लिम की बेटी का मिलन, ये नामुमकिन है। इस मौजू को लेकर सुरैया का जीना मुहाल हो गया था, ना घर में चैन ना बाहर चैन। दोनों ने

आपस में मिलने की तरह तरह की तरीके अब ढूंढते थे। अब हम आपको फिल्म अफसर का गीत सुनाते हैं। इस फिल्म में देवानंद और सुरैया ने अदाकारी किए थे।

मन मोरा हुआ मतवाला गायिका और अदाकारा सुरैया की आवाज में पेश था ये गीत। संगीत देने वाले थे सचिन देव बर्मन। आखिरी बार घर में मिलने के बाद सुरैया ने देव से कहा, कल शाम को ठीक 7 बजे फोन करना, वो टेलीफोन के आसपास रहेगी। नानी माँ को जब पता चला कि सुरैया हर रोज 7 बजे देव से बात कर रही थी तो नानी जी ने सुरैया को मना कर दिया टेलीफोन उठाने को। पर देवनंद हारने वालों में से नहीं था। वो बार बार फोन करते रहे और नानी जी बार बार टेलीफोन उठाकर पटक देती थी। दोनों को आपस में मिलने की अब एक ही मौका था और वो भी शूटिंग का दिन। सिर्फ शूटिंग के वक्त, शूटिंग के दौरान नानी माँ और मामू जान इन दोनों का एक एक हरकत पर नजर रखते थे। जो डायलॉग डिमांड करता था वो अदायगी को निभा कर फिर नानी के पास बैठ जाती थी। जिस हालात में देवनंद अब थी वो बेबस थे और कहा कि अब उसे एहसास हुआ कि जिन हालात से अब वो गुजर रहे हैं इन हालात में प्यार करने वाले खुदकशी करते हैं। तरस गया था वो सुरैया से अब दो बात करने को। इतना पहरेदारी उसकी आसपास थी क्योंकि नानी माँ और मामू जान के साथ और कई रिश्तेदार को साथ मिलाते थे। देव ने कहा कि सुरैया से मिलने को जमीन और आसमान एक कर देगा। सुरैया से मिलने के लिए क्या तरकीब सोचा था, सुनाते हैं एक गीत।

हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। फिल्म काला पानी का गीत था जो देवानंद पर फिल्माया गया। इस गीत से पहले आपने सुना कि देवानंद ने सुराया से मिलने के लिए जमीन और आसमान एक करेंगे, लेकिन इतना पहरेदारी थी कि मिलना नामुमकिन था। सुराया का एक दोस्त जो कैमरा मैन था और परिवार में आना जाना था, देविचा नाम था और देवानंद और सुराया की प्यार की कहानी से वाकिफ था। इस फिल्म में भी देविचा कैमरा संभालते थे। देव उससे मिलकर कहा, देविचा मेरा एक काम करोगे? आप हुकुम कीजिए साहेब। देव जल से एक टुकड़ा कागज पर लिखा, नोजी माय लव, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तेरे बगैर जिंदगी वीरान है। शाम को जब शूटिंग खत्म हुआ तो देविचा सुराया की सामान समेत रहे थे, तो उसने कागज का टुकड़ा सुराया के मेकअप बॉक्स में रख दिया। जब वो इस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी। फिर जवाब दिया, कल ठीक 7 बजे मुझे फोन करना। अगले ही दिन ठीक 7 बजे जब देव ने फोन किया तो सुराया ने आवाज सुनते ही फिर से रोने लगी। घर में भी नानी सुराया की पहरेदारी करती थी। फोन पर किससे बात करना या घर में कौन लोग आते जाते हैं, नानी माँ डरती थी कि शायद देवानंद का कोई दोस्त संदेश लेकर आ जाए। सुराया को मना था टेलीफोन उठाने को और देवानंद कोशिश करते रहे। फिर एक दिन जब उसने फोन किया तो सुराया की माँ फोन उठाई। उसने कहा, देव तुम सुराया से कल रात को 11 और 11:30 बजे के दरमियान छत पर मिल सकते हैं। पहले तो वो खुश हुआ, फिर ख्याल आया ये साजिश तो नहीं है। वो अब उलझन में थे। सुराया की माँ पर उसे यकीन था क्योंकि परिवार में वो एक ही थी जो देव का साथ दिया। देवानंद और सुराया से मिलन होगा या नहीं सुनाते हैं एक गीत के बाद। गीत जो हम आपको सुनाने को जा रही हूँ फिल्म बारिश का है, जिसमें देवानंद अदाकारा नूटन के साथ काम किया था।

नहीं डरेगा हम तो जानी प्यार करेगा। इसी जज्बा के साथ देवनंद आखिर में फैसला किया कल रात 11 बजे के बाद सुरैया से मिलने को। अपने हिफाजत के लिए उसने अपना दोस्त जो पुलिस इंस्पेक्टर था साथ लेकर गया। पुलिस दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें फ्लैशलाइट देता हूँ, कोई खतरा हो तो इसे इशारा करना, मेरे पास रिवॉल्वर है, हम नीचे आपका इंतज़ार करेंगे। सुरैया अपने रिश्तेदार के साथ मैरिन ड्राइव में 6वीं मंजिल पर रहती थी और सुरैया की माँ ने कही थी कि देव तुम सीढ़ी से ऊपर जाओगे, वहाँ छत पर सुरैया तेरा इंतज़ार करेगी। अपना पुलिस दोस्त से सब तय करने के बाद अगले दिन रात को 11 बजे सीढ़ी से देव ऊपर गया। सुरैया देव का इंतज़ार कर रही थी। बिना एक शब्द कहे दोनों आपस में लिपट कर देर तक खड़े थे और वो रो रही थी। देवनंद ने कहा, नानी माँ और मामू जान उसके जज्बात को बहुत ठेस लगाए थे। उनका तड़प अपने प्यारी नोजी से मिलने के लिए वो नहीं बयां कर सकते थे और आज वो अपने नोजी के पास है, उनके कदमों में। सुबह की पहली किरण जब नजर आने लगी तो दोनों अलग हो गए। बड़ी मगन में अगले दिन शूटिंग के लिए देव घर से निकला। देविचा को देखते ही उसने कहा, दोस्त मेरा एक काम करोगे, फिर से खत ले जाना है क्या? नहीं नहीं, देव ने हंसकर कहा, इस बार मंगनी के अंगूठी ले जाना है। सवेरी बाजार में सबसे कीमती हीरे के अंगूठी देवनंद ने सुरैया के लिए खरीदा। दो दिन बाद देविचा सुरैया का घर गया और मौका पाते ही सुरैया को अंगूठी दिया। इसे लेकर वो फौरन अपने कमरा में गई, अंगूठी को चूमकर पहन लिया। फिर जाकर देविचा से कहा, आप जाकर उनसे कह देना अंगूठी कबूल किया और इसके साथ उन दोनों की मंगनी भी हो गई। देव ने कहा, वो अब सातवीं आसमान में उड़ रहा था, दुनिया का सबसे खुश नसीब शख्स थे। पर कब तक? दिन बीते, हफ्ते गए, सुरैया की तरफ से ना कोई खत ना कोई संदेश। देवनंद अब घबराहट महसूस कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसे क्या हुआ था सुरैया के साथ। देविचा से कहा, माय फ्रेंड, एक आप ही है जो वहां से खबर ला सकते हैं। देविचा अगले ही दिन जब सुरैया के घर गया तो नानी जब दरवाजा खोला तो नानी ने कहा, आज से ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। देवनंद का परिवार या दोस्त में जो भी है, सुरैया से मिलने की इजाजत नहीं है, ये मेरा हुक्म है, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वजह क्या थी? देवनंद और सुरैया का मिलन होगा या नहीं, अगले प्रोग्राम में हम बयां करेंगे। हाँ, एक बात है, वो महसूस कर रहा था कि सुरैया के साथ ना इंसाफी हो रहा है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने अदाकार देवानंद की फिल्मी सफर के बारे में बयान किया। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं।

कमाल का नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज में। बदलते मौसम पे अपनी उम्मीदें ना रखना, दिन बहारों के बड़े मुख्तसर हुआ करते हैं।

ये सावन का मौसम सुमन कल्याणपुर से पेश था ये नगमा, मौसिकार रोशन की मौसिकी थी, कलाम शकील बड़ायुनी का। कब यारे तेरा साथ नहीं, कब बातों में तेरा जिक्र नहीं, सदमा तो है मुझे कि तुझसे जुड़ा हूँ।

0: झुक गया आसमां भी, सदाबहार नगमा पेश था शंकर जयकिशन का संगीत, गीतकार थे हसरत जयपुरी और कानों में रस घोलने वाली आवाज़ थी रफ़ी साहब की। अब सुनवाते हैं मन्ना डे और आशा भोसले से ये दुवेत।
1: शम्मा ये प्यार का

समा ये प्यार का बहार के ये मेले, ऐसे में निकलूं ना ढूंढ के अकेले, दिल में भी आजकल डर।

0: अंदाज में पेश था ये जुगल गीत। इजाजत हो तो एक शिकायत करूँ तुमसे, बहुत वक्त देते हो पर ना जाने किसको। तो सुनो स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला, हाय बेचारा।
1: ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी

सुनहरी दौर का सदाबहार डुएट आपने अभी महेंद्र कपूर और मीना कपूर की आवाजों में सुना। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला दो गाना।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टर्डम स्टूडियो से नशर किया जाता है। एक बार फिर प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और जहाँ से भी आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप भी इसे लुत्फ उठा रहे हैं।

छोर देंगे हम। उदित नारायण से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे रूप कुमार राठौर, दर्शक को लिखे थे साईद कादरी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। तेरे बिन सब कुछ होता है, बस बस गुजारा नहीं होता।

रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमा सुनने के बाद। मदन मोहन की मौसिकी थी और राजा मेहदी अली खान ने तर्ज को लिखे थे। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए, जो एक तू मिले, जो एक तू मिले, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए।

0: ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नदीम श्रवण संगीत से सवारे थे और शायर समीर का लिखा तर्ज था। किशोर कुमार और आशा भोसले से आइए सुने ये डुएट।
1: क्या तेरी जुल्फे हैं,

लक्ष्मीकंद प्यारे लाओ का संगीत रचना गीत रचना असद भोपाली का था। अब हम आपको मोहम्मद रफी साहेब से ये नगमा सुनवाते हैं, तो लीजिए लुत्फ उठाइए उन्हीं की शहद भरी आवाज़ से।

फिल्म काजल में से ये नगमा पेश था। मौसिका रवि की मौसिकी थी, कलाम था शायर साहिर लुधियानवी का। गीतों का नशा आज सर चढ़ कर बोलता है, आप नहीं सुनते तो स्वरों की महफिल कैसे सजते। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। एक बार फिर रफी साहब से आइए सुने ये नगमा।

दिल छू लेने वाले नुहमा पेश था मौसिकार ओपी नैयर की मौसिकी और मजरू सुल्तानपुरी का कलाम था। मिजाज अपना मिला ही नहीं जमाने में, ना मैं हुआ कभी इसका, ना मैं हुआ कभी इसका, ना ये जमाना मेरा, कैसे मिजाज आपके है।

बबला मेहता और अनुराधा पौडवाल से पेश था ये नगमा। संगीत से सवारे थे नदीम श्रवण। जिनके दिल पे चोट लगती है ना, वो आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। आरजू के फूल सहरा में खिल नहीं सकते। हम जिंदगी के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी।

जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है। सदाबहार सॉन्ग पेश था, सांस से सजाए थे शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज था। मोहब्बत भरी अंदाज में सुनवाते हैं ये डुएट।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडेई के साथ परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिवार को 86 साल की आयु में जसन तख्तख यार औत भाई श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडेई का छोटा भाई भौजी श्रीमती बलवंती रामसुख पांडेई का देवर, आठ लड़कन के काका और ककवा ससुर और सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर ननवा ससुर पर आजा और पर नाना, रोतरदम का पैल का रहने वाला श्रीमान कृष्णदेव रामसुख पांडेई की मृत्यु रोतरदम में हो गई है। अम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडेई और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिवार को 86 साल की आयु में जसन तख्तख यार औत भाई श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडेई का छोटा भाई भौजी श्रीमती बलवंती रामसुख पांडेई का देवर, आठ लड़कन के काका और ककवा ससुर और सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर ननवा ससुर पर आजा और पर नाना, रोतरदम का पैल का रहने वाला श्रीमान कृष्णदेव रामसुख पांडेई की मृत्यु रोतरदम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफार्ट सेंट्रम देला द बुजम खुदजे के मुर्दालय और यह है रोतरदम बुजम सिंगल पर। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 11:30 बजे मोरखन वोंसदख हालफ ट्वाल्फ किए जाएंगे। ओकनबर्ग क्रीमाटोरियम ओकनबर्ग स्ट्रात 21 ओकनबर्ग स्ट्रात 21 देन हाग में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-3-12-31 06-33-3-12-31। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार रामसुख पांडेई के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार सुनिए निवखेन से। परिवार घिसाए शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में नेखनन फैफ्तखियार औत माँ विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसाए के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयक रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखेन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसाई की मृत्यु निवखेन के सेंट अंतोनियस जिकन हाउस में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। निवखेन

इस सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में 59 यार और मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसई के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहारिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयक रामजू का सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखैन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसाई की मृत्यु निवखैन के सेंट आंतोनियो सिकन हाउस में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज मंगलवार की रात में 7 से 8 तक। Vanavond van 7 tot 8 uur uitvaartcentrum Daalwijk Moerdalei. Florida Drive nummer 7 Utrecht Overvecht me. Aur arthi ke dahakriya kalbud ke subah 10:30 morgen 10:30 kiye jayenge Daalwijk crematorium Florida Drive nummer 7 Utrecht Overvecht me. Sunne walon se nivedan hai suchana ko aur aage tak pahuncha dene ke liye उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फरजोरखिंग समस्त परिवार घेसाए और परिवार शिव गोविंद और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हार्लेम से समस्त परिवार रॉबी बुद्धो बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल के आयु में नेखरन सैफ अंतखियार और श्रीमान रॉबी बुद्धो की बहन श्रीमती लीना बुद्धो राम सुख की ननद माइकल और सरिता के फुआ गीता और विकास मिश्री लाल के फुआ सास देवांशी और दिया के नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्थ में हो गई है। इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार रॉबी बुद्धो बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में नेखरन सैफ अंतखियार औत श्रीमान रॉबी बुद्धो की बहन श्रीमती लीना बुद्धो राम सुख की ननद माइकल और सरिता के फुआ गीता और विकास मिश्री लाल के फुआ सास देवांशी और दिया के नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस में हो गई है। इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया ये कल बुध के दिन में 5 बजे किए जाएंगे। वैंसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फ्रजोरखिंग समस्त परिवार सुधवा और परिवार बुद्धू के दुख में शामिल है।

सितारों का सितारा उजाला रेडियो के जरिए शरण प्रभाकर की आवाज के चांदनी खिल रही है फिर भी जलता है बदन हाय हाय वही मजेदार स्टेशन द नंबर वन इन द वर्ल्ड उजाला रेडियो लाइव फ्रॉम एम्स्टरडम चांदनी खिल रही है फिर भी जलता है बदन

मिक्स मैक सॉन्ग्स में इस बार आप सुनिए मेरे सनम तेरा खत मिला, मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने लिखा है खत लिखने को लेकिन पेन नहीं है।

मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले मैं आ गई और मैं आ गया। और का लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर के आवाजों।

बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शंस आपकी खिदमत में नशर है और इस बार आप सुनिए कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी और रूप की ओरानी तू परेंड को संभालनी।

बहुत ही मजेदार सिलेक्शन आपने भी सुने है कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी। उजाला रेडियो का पैगाम है और फोन का नंबर है 020-409-08-07। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 और 3 के दरमिया 020-409-08-07। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज़।

लता जी की आवाज आपने भी सुने हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन की। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुमसे जीना है तुम पे मरना है, तुमसे है हर खुशी अपनी। लता मंगेशकर की आवाज एक बार फिर से हम आपको सुनाने वाले हैं और इस बार साथ देने वाले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी।

0: हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: Dames en heren, luisteraars van Ujala Radio. Het wordt tijd voor uw hosts. Hier op uw radio. Shahid Gozar.

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीद गुलजार और आप सुन रहे हैं यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो। उजाला रेडियो के माध्यम से आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है। और सबसे पहला सिलेक्शन इस एक घंटे का कार्यक्रम में शफकत अमानत अली की आवाज, आज जाने की तू जिद ना करो। शफकत अमानत अली।

कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़िया, यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की तू जिद ना करो। शफकत अमानत अली की आवाज में लाइव रिकॉर्डिंग आपने अभी सुने हैं यू आर उजाला रेडियो के जरिए।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

मून संस्कार होने वाले हैं टू जनवरी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबुल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए, दिल एना दान के साथ रेमोंड। एंड ये है उजाला रेडियो और मैं हूँ तू जाने है तो। एंड नाउ अ ट्रिब्यूट टू सुंदर पोपो जी। आज का प्रोग्राम में सुनने वालों आप सुनेंगे जो कि पेश है आप हर एक सुनने वालों के लिए। चलिए अ ट्रिब्यूट टू सुंदर पोपो रवि बी के जरिए।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्ण दत्त राम सुखपांडे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिवार को 86 साल के आयु में जसन तख्त अख्तियार और भाई श्री पंडित कृष्ण दत्त राम सुखपांडे का छोटा भाई भौजी श्रीमती बलवंती राम सुखपांडे का देवर, 8 लड़कन के काका और ककवा ससुर, सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर, ननवा ससुर, पर आजा और पर नाना, रोटरडम का पेल का रहने वाला श्रीमान कृष्णदेव राम सुखपांडे की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। आम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्ण दत्त राम सुखपांडे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिवार को 86 साल की आयु में जसन तख्त अख्तियार औत भाई श्री पंडित कृष्ण दत्त राम सुखपांडे का छोटा भाई भौजी श्रीमती बलवंती राम सुखपांडे का देवर, 8 लड़कन के काका और ककवा ससुर, सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर, ननवा ससुर, पर आजा और पर नाना, रोटरडम का पहले का रहने वाला श्रीमान कृष्णदेव राम सुखपांडे की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज रात के 8 बजे तक ऐतफाट सेंट्रम खुद से ही देला के मुर्दालय द बुजम सिंगल रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 11:30 बजे मोरखन हालफ तवालफ किए जाएंगे। ओकन बुरख क्रिमाटोरियम ओकन बुरख स्रात 21 दिन हाँख में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-12-31 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार राम सुखपांडे के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए। हार्लेम से सुभाष गोली और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 79 साल के आयु में निखरन जीफ अंतखियार और श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सूरजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस जोइट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 79 साल की आयु में नई खनन जीफन तखियार और श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सूरजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस में हो गई है। इन्हें लोग बिया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाहक्रिया कल बुध के दिन में 5 बजे मोरखन में दाख फैफ्यूर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेर वैख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतफार्द फुरजोरखें परिवार सुधवा परिवार बुद्धू और परिवार गोली के दुख में शामिल है।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आज आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दे दो, दर्द भरी गीतों के साथ। उन गीतों इस प्रोग्राम में आप सुनते हो जिन गीतों को सुन करके कभी तो दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम तो आप ही के लिए है। हम तो बस इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को बनाते हैं कि आप सुन करके और पसंद करोगे। तो चलिए पहला गीत आज का प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में आप सुनेंगे।

आंसू भरी है ये जीवन की राहें। मुकेश जी की आवाज में आप सुने 1958 नईखुन्तिन अख्तन फैफ्तख की फिल्म परवरिश से निकाला हुआ दत्ताराम संगीत से सजाए। और इस फिल्म में काम किए राज कपूर के साथ माला सिन्हा।

और जब चली ठंडी हवा, गीत आप सुने आशा जी की आवाज में, और 1966 नैखुंतिन जैसन जस्तख के फिल्म दो बदन से निकाला हुआ गीत, इसमें संगीतकार रवि, हाँ म्यूजिक कंपोजर रवि, और फिल्म में काम किए मनोज कुमार, आशा पारेख और सिमी गरेवल, और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल।

0: है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गीत आप सुने किशोर कुमार, हाँ किशोर कुमार की आवाज में, और देखा जाए तो 1969 1969 की फिल्म दो रास्ते से निकाला हुआ गीत। इसमें म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत एंड प्यारेलाल थे, और फिल्म में काम किए राजेश खन्ना, मुमताज और प्रेम चोपड़ा के साथ भी बिंदु।
1: जाने वो कैसे

जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला। और आप गीत को सुने हेमंत कुमार जी की आवाज में 1957 की फिल्म प्यासा से। सचिन देव बर्मन इसमें संगीतकार थे और गुरुदत्त के साथ काम किए वहीदा रहमान और माला सिन्हा।

मेरी ना सोते कटे और ना रोते कटे, मुकेश जी की आवाज में। 1961 की फिल्म जय भवानी का गीत, और इसमें काम किए जय श्री गदकर, मनहर देसाई और लता सिन्हा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ पेश है। अब हिस्सा लेगी लता जी।

और लता जी की आवाज में गीत को आप सुने। फिल्म का नाम बहारों के सपने 1967 नई खंतिन जीफन जस्त के फिल्म और इसमें संगीत से सजाए राहुल देव बर्मन और इस फिल्म में काम किए उन दिनों राजेश खन्ना और आशा पारेख। दर्द दिल

जीवन, हाँ जीवन एक अधूरा सपना, कुछ देखा है और कुछ बाकी है। सीएच आत्मा की आवाज में गीत को आप सुने, सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्दे दिल आप सुन रहे हैं। और ये तो हमारी खुश नसीबी है कि प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं और उम्मीद है कि पसंद भी आप करोगे। एक बार फिर लता जी।

0: रवा गई उनकी याद और वो नहीं आए। लता जी की आवाज़ और 1966 निखंतिन जैसन जैस्तख की फिल्म दो बदन का गीत, जिसमें रवि संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार और आशा पारे।
1: तुम्हारे चेहरे पर हंसी कितनी खिलती है। पूनम
2: जी,
1: कल से एक बात कई बार सोच चुका हूँ।
2: क्या?
1: कहीं तुम्हारी सूरत की दो लड़कियां तो नहीं? उस दिन राकेश कह रहा था, कल वो बेहुदा डांसर भी बोल रही थी। और अजीब बात यह है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम भी मधु ही था।
2: अगर आपको मधु फिर मिल जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकेंगे?
1: पूनम, आज मुझे उसे कोई शिकायत नहीं। उसके दिए हुए दर्द पर किसी हमदर्द का साया पड़ चुका है।
2: किसका?
1: तुम्हारा।

0: अच्छा तो मैं चलूं?
1: पूनम, मंजिल भी एक है, डगर भी एक है, लेकिन कश्तियां दो, क्या ये मुमकिन नहीं? हम दोनों एक साथ चलें?

मुकेश जी की आवाज। फिल्म का नाम कति पतंग, जो फिल्म 1970 निखंतिन जीवन तक में बनाई गई, संगीत से सजाए राहुल देव बर्मन और फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख।

मुश्किल है, बहुत मुश्किल चाहत का भुला देना। और गीत आप सुने लता जी की आवाज में, 1969 1969 की फिल्म महल से। और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश, और इस फिल्म महल में काम किए उन दिनों अशोक कुमार के साथ मधुबाला।

तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, और इस फिल्म में 1961 में जो बनाई गई है नीखंती नस्तख में, तो काम किए देव आनंद, आशा पारेख और सुलोचना जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ। और आज का इस प्रोग्राम में एक आखिरी गीत पेश है आपके लिए।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।